0: उन्होंने ये शर्त थी कि पुष्कर की खुदाई और सुंदरता पे खर्च किए जाए, सरोवर की खुदाई उस पर किए जाए, ये कर नहीं सके। तो वहाँ की गवर्नमेंट को कहा किसने, ये जो आते हैं ये लेख लिख करके इन्होंने तो वहाँ की गवर्नमेंट को आई
1: आप गए कि सुनो बोलो भाई भाई लड़की। हाँ